अपन भ्रष्ट गगन ते पई सब हनियान बधाई दई। खाल भवन के सिरजन हारे दास जान

पूर्ण होए हमारी आशा, तौर पर जन की रह प्यासा। सेवक से कमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। फूजो सदा हमारे पछा, सिरियस तो जो करे और अच्छा।

0: निकाल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा।
1: सब जगत बनायो देव दया चक्षण उपजायो,
0: आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा।
1: नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जो आप सवारी,
0: सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहत कियो।
1: प्रकट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत,
0: चिट्टी ते गुण चरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: सतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन पे सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने, घट घट के पढ़ पढ़ की जाने।
1: जब
0: यह कर्क अर्थ हो कब हूँ, तुम मैं मिलते दे तर सब हूँ।

शिव को केत सदा शिव निरंकार का चीन तने पे व तुमरा लखन जाय पसारा गए बे सजा प्रथम संसारा अंड जे रज सहित जगीनी तुब जखान बहर रच दीनी।

Mercedes Fendin Grigé, Tirus Tadra Gran Sudara, Triacere Triman Tribub Sambade, Mast Sob Mastia Hujum. आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार किसन बिशन कब हूँ।

आपे आप गरीब निवाजा हार परा मैं आन द्वार तो हे तुम सा हिम्मे किंकर सारा।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंकर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंकर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख

सच जुगद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ

हे पी सच नानक सी एको अंकार सतनाम करता पुरख निरपा निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अरदास करो हे वाहिगुरु, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा। वाहिगुरु असी मैल दे नाल भरे हुए हाँ, कृपा कर दियो तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। शरण दे विच आया नू रख लियो महाराज,

सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच्चा मुक्त है।

सिर छाई पाई मोर खंदे पत गवाई। विण नावे किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछोताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सो पाया।

पंडित हिकमत हो जस संजे करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह करबार।

मत फिटै हो अन असाडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन जुठै चुली परेन कहो नानक सच तिहाई है सुच हो वै ता सच पाई है पौड़ी चित्तै अंदर सब को।